पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्याव है, सब त्याव है तुद जी, तो हर सच

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रण को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत।

साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देह पारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब

दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काल, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाछ सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते तह उबारा।

धारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता विद नाना कृष्ण जथा मचरित्र उचारो चूक होए कबले हो सुधारो कबियो बाच दोहरा जोनिज प्रभ मोसो।

कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रवसस क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत सुर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ए कथा सुनै अर गावै दुख पाप ते निकट न आवै विष्णु भगत की ए फल होई आद ब्याद छै सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचामन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधा।

तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गोर नमो चरण अरविंद। जिस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जेना जीते पंच बेकार। तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन परतार। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह।

बिन कहूँ अंधार, गुरु बिन समझ न आवै, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै।

0: गौरकारिश शब्द सपुन अगन कट सब तेरे वाहेगुरु जी का
1: खालसा
0: गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु न दिखियो न पिय।

के ग्याबल ग्याबे के अपल गुनाह है के साहन साहे के कारण कुनिंद है के रोजी दे हंद है के राज करी ही मैं के कर्म करी मैं के सर्वम कली है के सर्वम दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गाने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देसाए के सर्वत्र पेशाए के सर्वत्र राजाए के सर्वत्र साजाए के सर्वत्र दीनाए के सर्वत्र लीनाए के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देसाए के सर्वत्र पेशाए के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजाए के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राणाए के सर्वत्र प्राणाए के सर्वत्र देशाए के सर्वत्र पिसाए के सर्वत्र माने सदाव प्रधान के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र भानाए के सर्वत्र मनाए के सर्वत्र इंद्राए के सर्वत्र चंद्राए के सर्वम कलीमय के परम अफीमय के आकुल अलामय के सब कलामय के उस नल वजू है तमाम रुजुआ हमेशा सलाम सली खत्म दम गरीबलस्त कस्ता गरीबल प्रस्ता बलांदल मकान जिमिन जमान तम जुल तमा मै रुजुर निधान हरि फल जी मर जा गिजकी न ने कुल तरंग है भेद है भंग है जी जुल नवाज है गरीबल करा दे है निरुक्त स्वरूप है तरमुक्त भूत है प्रभुक्त प्रभंस जुगत सुधुवंस सुजुगत सुधा हंसता एवं स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदा बिलकाम है निर्बाद स्वरूप है अगाध अनूप है ओ अंग आदि रूप है नास रूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामी त्रिभर्ग त्रिबादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्भागे सो सर्वा अनुरागे सो सर्वा अनुराग त्रिभुगत स्वरूप है छेज है छूत है के नरक प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चात्री छंद अभंग है अनंग है अपेख है अलेख है भरम कर्म अनादि जुगाद अजय है वह है भूत्या धूत्या अनास है दास है धंद है बंद है भगत है वरक्त अनास है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत्या लिख्या देखा लिखा भेख्या ढाह गाह सम है गम है नील है नाद अनित है सुनित है जात है जाद चरपड़ छंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्म सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता ऋषाबल छंद तय प्रसाद नमो नरकनाशिष देव प्रकाश अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र

ஏதாலும் நிரங்கார் நிர்வகாம்போ ஆது நீலநாது சாம்போ தா கா மூடு சார்து பேதா ஜா கூப்பேவன பாவது பேதா ताको कर पाहन अनुमानत माह मूड़ कच भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध जीती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजाओ प्रथम संसारा एक रूपा नूप सरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पज खान बहर रच दीनी कहूँ पूरा जह बैठा कहूँ सिमट पय शंकर कैठा सिगरी सिरठ दिखाई अचम्पव आदि जुगात सरूस जम्पव

पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेते आरजा पड़िए जेते सास।

मत्ते रंगड़ दा सिर वड़ के नेजे ते टंग लिया ते बीकानेर दी धरती वल नूं चाले पा दित्ती। बीकानेर पहुंच के सिंघा ने मत्ते रंगड़ दा सिर जथेदार बाबा बुढ़ा सिंह जी दे चरणा विच पेश कर दिता। पंथ ने खुशी दे जयकारे छड़े, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल दे जयकारा नाल आसमान गूंज उठिया।

लगी और न यही महात्म में अवतारी उजागिर यान कियो। तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुराज में अमृत।

सुन बेद बिरंत विचार रे हो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा गण को प्रभ दीन दयाल है संगत श्री।

सत संतोख तरियो रे आदि पुरख पर तख लिखो अक्षर मस्तक तुरे प्रगट ज्योत जग मगे तेज पूमंडल छायो पारस परस परस परस गुरु तिलक।

खटका सर्व सुख होवे, जहां जहां फल पाए तहां अमर अच्छे आरे रायत, तेग तेग फट दे बिरग की पैर पंच की जीत, श्री का सीता आ

निरपहो निरंकार सचनाम सब जाका किया सब जहान सेवक सेवा क्रम चढ़ाओ पिनी रंज नाम चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी करम लगाए पार कोलू चरखा चक्की चाकू थलवारों ले बहुत अनंत

जन दो पाए कै संभाले सब ना जिन करता है करना किया चिंता पे करनी था सो करता चिंता करे जिन पाया जग जिस जो हारी सो

पदे सिमरो सिमर सिमर सुख पाहो काल कले स्तन माय मिटा सिमरो जास विसंबरे के नाम जपत अग्न तहने के भेद पुराण सिमरत सुते आकर किने राम नाम क्या कर किनका एक जी जी बसावे ताकि मैं मगनी नावे ये कह दरस तुहारो नानक उन संग मोय उधारो सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम राओ प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे प्रभ के सिमरन दुख जम नसे सिमरन काल पर हरे प्रभ के सिमरन दुश्मन ठरे सिमरत कछ बिघन न लाके प्रभ के सिमरन अन दिन जागे प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे प्रभ के सिमरन दुख न संतापे प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तद्भुत प्रभ के सिमरन जप तप पूजा प्रभ के सिमरन बिन सह दूजा प्रभ के सिमरन तीरथ स्नानी प्रभ के सिमरन धर गय मानी प्रभ के सिमरन होए सुफला प्रभ के सिमरन सुफल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन उतरे मूचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ के सिमरन सब किछ सूझै प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ के सिमरन पूरन आसा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिदमाए समाए प्रभ जी बसे साध की रसना।

सिमरन सहज समानी प्रभ के ने चले आसन प्रभ के सिमरन अनहत चुनकार पार सिमर जिनको प्रभिन जन सर नहीं पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद पाए हर सिमरन पे सिद्ध जति जाते हर सिमरन नीच चौकुंठ जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की

0: हर प्रताप जन अवर न जानी,
1: ओत भोजन हर रस राते,
0: सुन समाध नाम रस माते,
1: आठ पहर जन हर हर जपे,
0: हर का भगत प्रगट नहीं छपे,
1: हर की भक्त मुक्त बहु करे,
0: नानक जन संके ते तरे
1: पार जा।

0: बिन सिमरन दिन रहन वृथा बिहाए,
1: मेघ बिना ज्यों खेती जाए,
0: गोविंद भजन बिन वृथे सब काम,
1: जो कृपन के निरारथ दाम,
0: तन तन ते जन कट बस्यो हर नाओ,
1: नानक ताके बल बल जाओ,
0: रहत अवर कश अवर कमावत।

0: के संग सदा सुख पावे,
1: सत्संग वस्त्र गोचर लहे,
0: साधु के संग अजर सहे,
1: साध के संग बसे थान ऊंचे,
0: साधु के संग महल पहुँचे,
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
1: साध के संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु के कुर्बान,
1: साध के संग सब कुल उदार,
0: सत्संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे,
1: साधु के संग सो तन पावे,
0: जिस तन ते सब को बरसावे,
1: साध संग धर्म राय करे सेवा,
0: साध के संग शोभा सुर देवा,
1: साधु के संग पाप पलायन,
0: साध संग अमृत गुण गायन,
1: साध के संग सब थान गाम,
0: नानक साध के संग सफल जन्म,
1: साध के संग नहीं कष्ट काल,
0: दर्शन पेटत होत निहाल,
1: साध के संग कलोखत हरे,
0: साध के संग नरक पर हरे,
1: साध के संग इहा उहा सुहेला,
0: साध संग बिछरत हर मेला,
1: जो इच्छा सोई फल पावे,
0: साध के संग ना बिरथा जावे,
1: पाप ब्रह्म साध रिद्वस,
0: नानक उदरे साध सुन रस,
1: साध के संग सुनो हर नाओ,
0: साध संग हर के गुण गाओ,
1: साध के संग न मन ते विसरे,
0: साध संग सर पर निस्तर,
1: साध के संग लगे प्रभु मीठा,
0: साधु के संग कट कट डीठा,
1: साध संग पे आज्ञाकारी,
0: साध संगत पई हमारी।

0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदर समान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊँचते ऊँचा,
1: मन अपने है सब ते नीचा,
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे,
1: नानक जिन प्रभ आप करे,
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की दीना,
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना,
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया,
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत।

0: मिथ्या नाही रसना पारसा
1: मन में प्रीत निरंजन दरस
0: भरत रहे रूपन पेखे नेत्र
1: संसंगेत
0: कन्न सुने काहु की निंदा
1: सत्य जाने आपस को मंदा
0: गुरु प्रसाद विख्या पर हरे
1: मन की वासना मन ते टरे
0: इंद्रिय जत पंच दोख ते रहे तो
1: नानक कोट मदे को ऐसा परस
0: वैसु सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
1: विषन की माया ते होए पिन
0: कर्म करत होवे नहि कर्म
1: इस वैष्णो का निर्मल तरम
0: बाहु फल की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल भगत कीर्तन संग राचे
0: मंतन अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ है अवर है नाम जपावे
1: नानक होए वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्यागे दुष्ट का संग
0: मनते विलसै सगला भरम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: सा संग पापा मल खोवे
1: तिस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
1: मंतन अर्पे बिसन परीत
0: हर के चन हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे।

0: कथा हृदय बसावै
1: सो पंडित फिर ज्यों न आवै
0: वेद पुराण सिमरत बुझे मूल
1: सुख मैं जाने अस्थूल
0: जो वर्णा को दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को सदा

0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम
1: जिसके मन पाप ब्रह्म का नवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम जिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगह परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: इस दास को सब सो जी पर
1: सरल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुख सो कहावे
1: तैसा हरख तैसा उस सोग
0: सदानंद नहीं वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: तैसा अमृत तैसी बिख खाटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान
0: तैसा रंक तैसा राजान
1: जो वरताए साई जुगत
0: नानक ओ पूरक कहिए जीवन।

0: कोट पर दुख ना करे,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट प्रदेश प्रमाए,
1: जित जित लावो तित तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाय,
0: कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट सस्य सुर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र छत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार।

0: आप जाने बलवंत
1: किन में होए जाए पसमंत
0: किसे न बदाए आप अहंकारी
1: करम राय तिस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान
1: सो जन नानक दरगह परवान
0: कोट कर्म करे हो तारे
1: श्रम पावे सगले बिरतारे
0: अनेक तपस्या करे अहंकार
1: नरक सुरग फिर

0: कौराज
1: सुपन मनोरथ बिरथे सब काज
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़ बागे किसे परापत होए
0: कर्म करावन आपे आप
1: सदा सदा।

0: मन में आत्मन अपने माहे,
1: नानक कीमत कहन ना जाए।
0: सत सत सत प्रभु स्वामी,
1: गुर प्रसाद किने वख्यानी।
0: सच सच सच सब कीना,
1: कोट मदे किने बिरले चीना।
0: भला भला भला तेरा रूप,
1: अत सुंदर अपार अनूप।
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी,
1: घट घट सुनी श्रवण वख्यानी।
0: पवित्र, पवित्र, पवित्र

0: नाम ते नहीं छुटा।
1: संत कै दुखन सुख सब जाए,
0: संत कै दुखन नरक मैं पाए।
1: संत कै दुखन मत होए मलीन,
0: संत के दुखन सो बाते हीन।
1: संत के हते को रखे न कोए,
0: संत के दुखन थान प्रष्ट होए।
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक संत संत निंदक भी करे।
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन काग जो लवे।
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए।
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सब को छले।
1: संत के दुखन तेज सब जाए,
0: संत के दुखन नीच नीचाए।
1: संत दोखी का थाओ को नाहे,
0: नानक संत पावे ता ओए भी गत पाए।
1: संत का निंदक महा अतताई,
0: संत का निंदक खिन टिकन ना पाए।
1: संत का निंदक महा हत्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा।

0: एक वृथि सब जान
1: देवन को एक भगवान
0: जिसके दिए रह अकाए
1: और न तृष्णा लागे आए
0: मारे रखे को आप
1: मान के कृष्णा ही हाथ
0: इसका हुकुम भू सुख होए
1: इसका नाम रख कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभु।

0: प्रतपाल
1: सगन की चिंता जिस मन मा है
0: इसते बिरथा कोई नाए
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अबनासी प्रभु आपे आप
1: आपन किया कछु ना होए
0: जैसे प्राणी लोचे कोए
1: किस बिन नाही।

0: पिसे चितार,
1: जोगच करे सोई सुखमान,
0: भूला काहे फिरे अजान,
1: कौन बस्त आई तेरे संग,
0: लपट रहो रस लोभी पतंग,
1: राम नाम जप हृदय माहे,
0: नानक पात से ती कर जाए,
1: जिस वखर को लैण तो आया,
0: राम नाम संतन कर पाया,
1: तज अभिमान ले हो मन मोल,
0: राम नाम हृदय में तोल,
1: लाद खेप संत संग चाल,
0: अवर त्याग लिखिया जंजाल,
1: तन तन कहे सब कोए,
0: मुख

0: जिस हो सो परसनाष्पदि
1: अविनाशी ब्रह्मन मैं राख
0: मानु की तू प्रीत त्याग
1: किस्ते परह नहीं किछ कोए
0: सर्व निरंतरे को सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गहर गंभीर गहीर सुजाना
1: और ब्रह्म परमेश्वर गोविंद।

0: मंगल सद जाके
1: सर्वतोम सुनिए कर थाके
0: राज में राज जोग में जोगी
1: तप में तपे सर ग्रस्त में भोगी
0: त्याए त्याए भगत सुख पाया
1: नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया
0: जाके लीला की मितना है
1: सगल देव हारे अवगाए
0: पिता का जन्म के जान है भूत
1: सगल परोई अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे
1: जनतास नाम ते आवे से
0: ते गुण में जाको परमाए
1: जन्म मरे फिर आवे जाए
0: ऊंच नीच तिसके।

0: चलत करे किन माहे
1: पूरे ओ पूरन सब ठाए
0: नाना विद कर बणत बनाई
1: अपनी कीमत आपे पाई
0: सब घट तिसके सब तिसके ठाओ
1: जप जप जीवे नानक हर नाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमृत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आगास पाताल
1: नाम के तारे सगले आकार
0: नाम के तारे पुरिया सब पवन
1: नाम के संग उदरे सुन श्रवण
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: पुरख सत केवल प्रदान
0: करतूत सत सत जाकी बाणी
1: सत पुरख सब माहे समानी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पात
0: सत करणी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सब पली
0: सत नाम प्रभ का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक गुरते पाई
0: सत बचन साधु उपदेश
1: सत जन जाके रे प्रवेश
0: सत निर्त बुझे जे कोए
1: नाम जपत ताकि गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी सृष्ट सुकर नहार
1: अवर न बूझ करत विचार
0: करते की मित न जाने किया
1: नानक ज्योतिष पावे सो वरतिया
0: विस्मन विस्म भय विस्मान
1: जिन बुझिया तिसाया स्वाद
0: प्रभके रंग राच जन रहे
1: गुर के बचन पदारत रहे
0: ओए दाते दुख काटन हार
1: जाके संग तरे संसार
0: जन का सेवक सो वड भागी।

0: पदे
1: चरण सत सत पर सनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेखण हार
0: नाम सत सत त्यावन हार
1: आप सत सत सब धारी
0: आपे गुने आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: बुझण हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जिन मान्या
0: परम करावन तिन मूल पछान्या
1: जाके हृदय विश्वास पर व्याया
0: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: है ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजा तिस माए समाना
1: बस्त माहेले बस्त गड़ाई
0: आको पिन न कहना जाए
1: बुझे बुझन हार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक

0: संत जना मिल करो विचार,
1: एक सिमर नाम आधार,
0: और अपाप समीत बिसारो,
1: चरण कमल हृदय में उतारो,
0: करण कारण सो प्रभ समरथ,
1: कर कहो नाम हरवाथ,
0: ए तन संचो हो वो भगवंत,
1: संत जना का निर्मल मंत,
0: एक आस राखो मन माहे,
1: सर्व रोग नानक मिट जाए,
0: जिस तन को चार खुंट उठता वह,
1: सो तन हर सेवा ते पावे,
0: जिस सुखो नित बाछ मीत,
1: सो सुख साधु संग बरीत,
0: जिस शोभा को करे भली करनी,
1: सा शोभा पज हर की सरनी,
0: अनेक उपावी रोग न जाए,
1: रोग मिटे हर अवखद लाए,
0: शर्म निधान में हर नाम निदान,
1: जब नानक दर गए परवान,
0: मन पर वो दो हर कह नाए,
1: दै दिस तावत आवे ठाए,
0: ताको बिगन न लागे कोए,
1: जाके हृदय बसे हर सोए,
0: कर ताती ठंडा हर नाओ,
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
0: पाबिन से पूर्ण होए आस,
1: भगत पाए आत्म परगास,
0: तित कर जाए बसे अविनाशी,
1: अहो नानक काटी जम पासी,
0: तत विचार तक कहे जन

0: उधार
1: हर हर सिमर प्राण आधार
0: अनेक उपाव न छूटन हारे
1: सिमरत सासत वेद बिचारे
0: हर की भगत करो मन लाए
1: मन बंछत नानक फल पाए
0: संग न चालस तीर तना
1: क्या लपटावे मूरख मना
0: सुत मीत कुटुंब और बंता
1: इनते कहो तुम कवन सनाथा
0: राज रंग माया विस्तार
1: इनते कहो कवन छुटकार
0: अस हस्ती रथ असवारी
1: झूठा टंभ झूठ पासारी

0: जन्म जन्म के किल बिख जाए।
1: आप जपहो अपना नाम जपाओ,
0: सुनत कहत रहत गत पावो,
1: सार पूत सत हर को नाम,
0: सह सुभाए नानक गुन गाओ,
1: गुन गावो तेरी उत्तर सुमैल,
0: बिनस जाए हो मैं बिख फैल,
1: वह अचिंत बसे सुख नाल,
0: सास ग्रास हर नाम समाल,
1: छाड़ स्यानप सगली मना,
0: सास संग पावे सतना,
1: हर पूंजी सच करो व्यवहार,
0: इहां सुख दरगे जयकार,
1: शर्म निरंतर एको देख,
0: कहो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जप एको साला है,
0: एक सिमर एको मन आए,
1: एकस के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप

0: साख प्रभ तुम्हें त्यावो
1: चरण कमल स्यों लागे प्रीत
0: भगत करो प्रभ की नित नीत
1: एक ओट एको आधार
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार
1: की दृष्ट महा सुख होए
0: हर रस पावे बिरला कोए
1: जिन चाख्या से जन तृप्तन